0: श्रोताहरू लोकगीतहरू सुन्ने क्रममा अब अर्को लोकगीत सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
2: Lengger 3 karya Singgih S. Sumaryadi.